Sumita, drumada la chovini, sunasini, sumadura mashini.

FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन थ्री चैनल। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस समय दिन के 11:58 होने को है। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारी प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम है। तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, तो जल्दी से उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें व्हाट्सएप। श्रोताओं, आइए सुनते हैं पहला गीत जिसे हमें भेजा है आसाम से हितेश कुमार ने। तो आइए सुनते हैं उनकी पसंद पर ये पहला गीत जिसे आवाज दी है सुरेश वाडेकर ने और फिल्म का नाम है सदमा।

है जिंदगी, है जिंदगी गर लगा दे, है जिंदगी गर लगा दे।

0: ऐ जिंदगी गले लगा दे, गले लगा दे, गले लगा दे, ओ गले लगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत सुरेश वाडेकर की आवाज में सदमा फिल्म से। आइए सुनते हैं गांव लाड़ीला के देदू राम जी की फरमाइश पर संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को आप सुनेंगे किशोर कुमार और महमूद मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है पड़ोसन।
1: दे दे दे।

0: ही जाल में हसत जात हम हसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशिया
1: तू क्यों
2: सीधे तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चुटकी कर दूंगा जा रे जा रे खा रे खागा का क्यों शोर मचाए।

0: जा रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आका नारे गारे गारे
1: यार जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सुर बदल
0: गारे गारे
1: ये हम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सुर की तरह जी ये सुर ये इन्ना आया है तो ये
0: एक चतुर नार
1: हम छोड़ ले जी
0: एक चतुर नार
1: हम पकड़ कर रखेगा जी
0: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे ए ए ए चतुर नार करके सिंगार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं आइए सुनते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत नागोरी पाड़ा से साधना की फरमाइश पर। आइए सुनते हैं आया सावन झूम के सुन से ये प्यारा सा गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुनने सुना आया सावन झूम के फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों को। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अवतार। इस गीत को सुनना चाहा है बिसापाड़ा से हर्षी ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अवतार फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ को। इस गीत को सुनना चाहा था हर्षी ने बिस्तापाड़ा से। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत, गांधी चौक से उमंग की फरमाइश पर। इस गीत को फिल्म का नाम है नमक हलाल।

आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो

बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, होश जो दिलाइयो तो होश जो दिलाइयो खुद भी बहक जाइयो, आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना

0: सीना डरे डरे बाहों में सिमट गए, सीने से लिपट गए रे।
1: तुझे तो आया मजा, तुझे तो सूझी हंसी, मेरी तो जान हंसी रे।
0: जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो।
1: बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो।
0: आज रपट आज रपट जाए तो हमें

0: बादल से छम छम शराबर से,
1: सावरी घटा से शराबर से,
0: बादल से छम छम शराबर से,
1: सावरी घटा से शराबर से,
0: बूंदों की बजी पायल घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे,
1: दिलों के राज खुले फिजा में रंग खुले, जवां दिल खुल के मिले थे,
0: होना था जो हुआ वही अब डरना क्या,
1: आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो,
0: हमें जो बचाइयो तो, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो, आज रपट आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें

पाकीज़ा सन से अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। इस गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों को।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत, कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

चंदे का बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत खा गई है, खा गई है। चांदी का बदन सोने की नजर उस

जीत सको, इसका इम्कान नहीं। खुद को बदनाम करें हम को नादान नहीं। कोई मरता है मरे हम पे एहसान नहीं, उनसे क्यों बात करें जिसे पहचान नहीं।

0: है बीमार तो अच्छा करे कोई,
1: कोई बेवजह कर पड़े तो क्यों परवाह करे कोई,
0: किसी मजबूरे गम का हाल क्यों है ना करे कोई।
1: मजा जब है कि तुम तर पकड़ो तुम देखा करे कोई,
0: मरे हम और तुम पर कि तुम पर खून का दावा दावा करे कोई, हाँ दावा करे कोई।
2: हाँ हाँ हाँ हाल नहीं दीवानों का, ये हाल नहीं दीवानों का, ये हाल नहीं।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हमारा आज का ये आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 1 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: रहा है दर्द जुम्रा।

0: सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है, हमारी स्टूडियो घड़ी में दिन में दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर बाद 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विदेश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के एक हिस्से सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजराबू राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना से अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा तथा 100 नए हवाई अड्डों और 20 हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
2: आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफी श्री गंगानगर है। जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन है राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है, तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सज करें, किस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक तो कोशिश हमारी चलती रही।
1: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो रहे हैं। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक, प्रभावी और नागरिक केंद्रित विधिक व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। UPA अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद से सरकार ने 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 18,470 वाहनों

0: के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉक्टर बी एल मीणा ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 7104, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनिहारी।

पणिहारी कार्यक्रम सहनारी संघ बहनों शोभा बहन का घना घना राम राम राम राम बहन राम राम आज तो राम राम दूर निकली ना अटके पड़ी जबान काला पछे जो आड़ंग आए बहनों भी सुनियो आंख बंधी है कि ना मैं अपर भी इंद्र राजी हो से अपर गांव में गीत गाई गई धरती तू सभागणी जरा इंद्र जड़ो भरतार तो ए भरतार जद राजी वे जाने धरती पूरी फले फूले और चारे पासे अपने हरियाली हुई बरसाड़ो सब जगह आयो हो बहनों अपर यही अपनी मरुभूमि में थोड़ो अजा तक कोई भी चीज तपस्या रे बाद में मिलिया करे पर एक बात और भी है कि कोई चीज़ ना अगर अपने थोड़ो प्रयास करो थोड़ी तपस्या करो थोड़ो इंतजार करो उधर बाद में जब कोई चीज़ अपन मिले नहीं तो उधर सीरी कुछ अलग हुई तो ये वास्ते हमें जरूर आस बंदी है पर एक दो दिनों में आज भी आ सके बरसात और बरसात आमते वैसे ये तो अपन रोज री बात है रोज रो राग अपने आला पर जाओ फिर हर गृहिणी रे घर में ना दिन भर अगर कोई मन लगाए कि काम करे ना तो दोनों काम छूटे भी बोले वास्तव में चाहे वो रसोई रो काम हो चाहे वो साफ सफाई रो काम हो चाहे टाबर और हो चाहे बुजुर्ग और हो चाहे अपर घर में ना ढोल ढकवार हो ये जो तिखरी रुत्र महीना अपर घरों में जो मवेशी है अपर घर में जो पशु है चाहे वो गाय है बकरी है भैंस है ऊंट है कोई भी पशु अबोलो जीव जिके ना पे कौन वो अबोलो जीव एकुन बोल सके कि मनो तिस लगी है या मनो तावड़ो लग रहे है या मनो मच्छर भी खा लिया या म्याल कोई शरीर में फोड़ा फुंसी हो गई है पर ए चीज अपन देखन ये मौसम में अगर अपे मवेशी ने नहीं सारा और वो सार संभाल नहीं करा तो वो अबोलो जीव बहुत दुखी हो जाए सबसे पहली तो समस्या पानी रही है क्योंकि अपर हमें तो घनी घनी सुविधाओं हो गई है हर गांव में अपर ट्यूबवेल बनिया है हर गांव में होदियाँ बनोड़ियाँ हैं हर जगह पानी भरोड़ा रही पर बरसाती पानी जो तलाया रहे वो तो इन दिनों में देखो सूख जावे सियाड़ सियाड़ मुश्किल चले और पचे तलाइयों में पानी हो भी कौन टोकों में पानी भरोड़ा हुई अपने मवेशियों ने जरूर पानी पिला दी लेकिन हमें जब हो धोन सू खासो आराम हो गई पर इन दिनों में जब गर्मी घनी पड़े तो वो मसीना बढ़ जाए ये मेरी देखती बात है और ये मसीना बढ़ गई तो पानी को नहीं आवे तो जितो अपने मवेशी ना पानी बखत मथे पियाँ तो सबसे एक तो आप इन पुण्य रो काम भी माना और बीजी बात क्या अपर घर में जो सदस्य है घर जो आप भौती हो तो ठीक उसी तरीके रहा वो अपरा सदस्य है ना कि हर घर में अपनी तो परंपरा है कि आप अपने पशु धन ना आप पशु बत्तो रखें फिर भी कई जगह लापरवाही हुए भी कि भाई अपे आप तो सोरा रहा था ठीक है एक बार टपन पाए रो बिस्व ठीक है काली को पास ये लाए रे महीना अपने पशु ना अगर दो बार तीन बार पानी नहीं पाऊँ तो वो ना उमरा भी तो गड़ा अपर जेड़ा जेड़ा उमर जीव भी अपर जेड़ो जेड़ो है तो उन्होंने भी प्यास उतनी लगे हमें जरूरत है कि अपे पानी रो संकलन पानी रो बचाव पानी रो जो अपनों रखा हुआ है वो कितों कर सकें और वो पानी भी अपनी बचत करोड़ी अपे इन्हें चार महीनों में आराम से काम में ले सकें अपे आप भी आराम से रह सकें और अपर पशु धन ना अपे बचाए रख सको हमें जो अगर हमें तो देखो आराम हो गई बरसात हो तो ट्रैक्टरों से खेती बाड़ी हो जाए नहीं तो यहाँ पर पशुओं में थी गाड़ी चलती अपनी ऊँटों से और बल्दों से जहाँ पर खेती खड़ी और उन्होंने बाकायदा वो चाकरी करता और उन्होंने एड़ा तैयार रखता कि बरसात होते यहाँ पर खेत जोती जाए हमें एक बात और भी देखने बहनों अपन मिले कि जो शिवजी का नाम दिया है गाय री चाकरी तो लालच में इंसान कर ले क्योंकि वो दूध दे और कहीं नहीं कि दूध देती गाय री लात भी खा ले धनी क्या कहीं लात मारी तो कहीं दूध तो दे और जो अपरा बैल है जो शिव नौंदिया है वो सू खेती बाड़ी भी जो अपर काम हो तो हमें लगभग बंद होने का आगार में थे क्योंकि हर इंसान चाहे कि जितो बेगो खेत खड़ी जे वो तो बढ़िया है क्योंकि जितनी जमी अपरी गीली हुई और बीज जितो जल्दी आके वे महीना ना खाएं तो फसल उतनी बढ़िया आ पड़ेगी अगे धीरे धीरे अपनी फसल बोई थी क्योंकि धीरे धीरे बड़द ज्यों भेवंता ज्यों ऊँट भेवंता ज्यों अपनी खेती खड़ी थी और हमें वो फटाफट खड़ी जावे तो अपरा वो बैलों जो काम है वो लगभग ख़त्म हो गया है कई जगह घोड़ियों में तेल निकलता तो बैल भी में काम आता हमें लगभग वो भी बंद होने का आधार में थे कभी सी कोई जगह दिख रही अपनी टंकियों तो हाल भी लावी बलदौरा जो गाडा हुई उनमें पौने की टंकियों जो घरों घर ले आई वो भी में काम में जरूर आई पर कहीं ना कहीं खेत रहे हिसाब से जब बैल कम काम आवन लगी है तो वे टाइम से उनकी देख रेख कम हुई है तो अपन चाहिए कि ये शिव नौ दिए रहो अपनी भी विशेष करके ये उनाले महीना ये लाए रे महीना ध्यान रखो आप सू पहले आपे उठाएं अपन उठता ही कुरलो करके चाय चाहिए
पानी पीवण चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो ठीक उसे तरीके से ए तो कोने कि वो घंटे घंटे से भूख लगे कि तस लगे, क्योंकि वहाँ तो शरीर की जो बनावट है, शरीर की जो वहाँ क्षमता है वो आपस दस गुणी, फिर भी वो दस गुणी खत्म हो जाए अड़ी मौसम में तो ज़्यादा हो सके। हमें जो मोटा मोटा दरखत आप घर वाले महीनों होता उगे नीचे आप पशुधन आप मवेशी है उगे नीचे बैठता, तो छोया में जब आप पशुधन बैठे तो तस थोड़ी कम लगे, छोया रे महीनों हवा थोड़ा बाहर आंतो रही तो आराम से पशु बैठे। हमें एक अभी बात मोटी समस्या है कि ओड़ा दरखत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जो 30 साल पुराना पेड़ है, 50 साल पुराना, 80 साल पुराना पेड़ है, तो धीरे धीरे तो कैसे उगे रोगी तो बुढ़ापो आवे उगे पासाड़े। अगर आप जो मोटा दरखत नहीं लगा रहा हो लाड़ला कुछ सालों में अड़ी उदासीनता आप बहनों फैली थी कि वास्तव में आप पर्यावरण मथे ध्यान भी कौन दिए, तो उम्री वजह से अपन हाँ देखो गाँव महीनों कई जगह पेड़ पौधा अपन कम नजर आवे, तो अपन चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा दरखत लगाऊँ घरों महीनों बाढ़ महीनों नीम हो चाहे सरीस हो चाहे खिजड़ी हो चाहे बावड़िया ही हमें तो मोटा मोटा उगे, तो उम्री छाया में जब आप पशुधन बैठे तो आराम से बैठे और वहाँ घनी तस भी कौन लगे और घना दौरा भी कौन और वहाँ की चमड़ी भी ये तावड़े में बढ़े कौन। और एक ये भी बात है कि हमें जो भाई दरखत को नहीं या एक पाड़े पूरे में एक ही एक पेड़ है तो वो नीचे पूरा गाय कौन बैठ सके पूरा पशुधन को नहीं आ सके, तो अपन चाहिए कि जो ओरा बनोड़ा या पठियाल बनोड़े आप जो खेत भी आप कपड़ों या त्रिपाल भी जो लगाए के और छोया करके आप पशुधन न ये मौसम में बैठा सको, ताकि वहाँ गर्मी भी नहीं लगे और अपनों भी मन में संतुष्टि हुए। कभी भी बहनों एक बात से देखो कि कभी कोई अपने पुण्य रो काम करें या कभी भी अपने कोई बढ़िया काम करें तो सबसे पहली बात है कि अपने खुद रे मन में इतनी संतुष्टि अपन महसूस हुई कि वास्तव में आज मैं बढ़िया काम किया, अपनों कहना बतावन नहीं या कहना केवन नहीं जरूरत भी गुण पड़े, खुद मन एक राम है और राम अपन महसूस बता दे कि आज बहुत बढ़िया काम करिए। कोई तृष्णा अगर अपने पानी पावा अपने आप खुद तृषा भले पर वे पौनी पावन रो अपन इतो संतुष्टि मिले कि वास्तव में आज आप बहुत पुण्य रो काम करिए। तो पणियारी में भी आज ये तावड़े में देख के मेरा दिमाग में बात आई थी कि आज आप यही चर्चा कर सकते कि ये गर्मी में आप कोकर अपन पशुधन ना बचा सको, तो पशुधन ना तो बचा लियो आप छाया में बैठा हो और हमें अपनी पणियारी की शुरुआत करो फूटे से गीत।

0: वाह शाह वाह गरिमा बहन, गीत एडो फुफो सुनायो, कितने टाइम बाद है सुनियो ना गीत। की करे थारी फरमाइश होवे और आपो नींद होवे जे आपरी सखियों नो आपो सखियों रो पसंद रो गीत थारी पसंद होवे सखियों री पसंद होवे भेड़ी भेड़ी तो आपनो सुनावन रो मजो आ जावे।
1: कई घणा ही सारा गीत एड़ा है जिको वास्तव में लुप्त हो रहा है। मैं जो है ने बाबा सारी लाडली कठिन चल ये तो दईवाना गीत गीत आपरे जिको घरो रे महीनो आपरे दिक्कत करी ने जे रवाने कराई वी टाइम गाई जे वास्तव में एड़ा गीत गाई जे वी सु आंसू आवे तो आंसू आवनो कोई बुरी बात तो नहीं करी मैं आंसू आवनो यानी कि मन हल्को हो।
0: बखत बखत री बात होया करी आंसू भी टाइम सर आना चाहिए। हणो कह रहे घर में बढ़िया खुशियों रो माहौल चले ना आपो वो टाइम रोता भी लगता देखी जे तो वो भी बात सही कोनी। आंसू री टाइम आंसू आना चाहिए, हंसी री टाइम हंसी आवनी चाहिए, ए भी बात सही बताई थो। तो ए जको थो हणो कह जे मौके अनुसार हर चीज है तो मौके अनुसार जको चीज आप देखो ये तो चलो हंसी और खुशी है सब अलग चीज है पर ऋतु अनुसार मौके अनुसार और मौसम रे अनुसार अगर इंसान जीवन शुरू करे नी तो खासी खासी बातों अपने आप हल हो जाए,
1: तकलीफों रो समाधान
0: समाधान हो जाए। हाँ देखो थे हर इंसान परेशान
1: बिल्कुल
0: या दौड़तो भागतो या समस्याओं से घरोड़ो या आप बात में जो बताओ कि नहीं बताओ असमंजस्य
1: बिल्कुल
0: ऊर में घरोड़ो तो ये रो मनो तो एक सीधो सी हल एक मेरा दिमाग में आवे गरिमा बहन देखो थो ना सुनाओ
1: बिल्कुल
0: के अगर इंसान थोड़ो सादगी से जीवन शुरू करे ना जो पहले आप
1: बिल्कुल
0: तो वे सादगी में किए गए आज भी जो भागा दौड़ है आज भी जो आवश्यकताओं है भाई हमें आप अपने सब चीज है तो कोई हमें फलौनी चीज को नहीं ए चीज है तो ओ चीज को नहीं भाई पहले आप अपने लाइट ही को नहीं थी पंखा को नहीं था चौनना को नहीं था मोरे आपने जिसकी बात है आप पर गांव में लाइटों को नहीं थी बाकायदा चिमनी में बच्चा पढ़े आया और होशियार बने अफसर बन गया
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और पंखा को नहीं था तो पंखी हवा गर्मी
1: घड़ी बैठ जाता था
0: पंखी जो हवा कर लेता और हवा आ जाती थी
1: बिल्कुल
0: और मोरे तो लारे ओरे में खिड़की थी वो खिड़की रे मोरे दरवाजे मोरे पिताजी अरे जो गुणी या कोई अड़े जाडू कपड़ा
1: पड़ भी जाए बिछाए
0: गीलो कर ढाल दे तो ये लाए रे मन अड़ी हवा
1: ठंडी आ गई
0: मतलब कहो ना हमें सुविधा हुई है अच्छी बात है पंखा हो गया पंखा होया तो हमें कूलर होना चाहिए
1: ये उठाए सबसे बड़ो कारण की है
0: हाँ
1: कि आजकल रो जो है जनरेशन है नी संतोष ही कोनी
0: वाह
1: जितो मिलियो है नी वो और बदिक चाहिए घर में पंखे में पहले जिया तो क्या हमें कूलर
0: कूलर लाओ
1: कूलर आया तो क्या हमें एसी चाहिए बढ़िया हमें एसी आया तो क्या हमें ऑफिसों में एसी चाहिए
0: हमें तो
1: गाड़ियों में एसी चाहिए
0: हर जगह एसी तो भरो लेते
1: हैं
0: तो कौन लेते
1: हैं
0: पर जरूरत है कि अपने सादगी से को कर जियो अगर इंसान सादगी से जीवन शुरू करे तो ये सब चीजें हट जाए
1: बिल्कुल सही बात कभी तो
0: सादगी से तो आप कौन कह रहे हैं कि साधु बन जाओ सादगी रो मतलब है पहनाओ ये मौसम में ये लाए रे महीना ये गर्मी रे महीना एकदम साधारण सूती कपड़ा पहनना और हल्का हल्का जिको आप अंगन सुहाओ तो वे सो अपन चाह वही को नहीं एसी में बैठो क्यों हल्को भी हवा पंखे भी हवा होते तो वो कपड़ों में अपन गर्मी
1: कौन लगे
0: पहनावो अड़ो होने के मौसम के अनुसार सादगी एकदम और बीजे नंबर में आ जाओ खान पान।
1: हाँ खान पान तो सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह में आजकल हमें खान पान लोगों रो इतो आप क्यों बिगड़ो रो कह जो ना लेकिन आपको ये देखो है नहीं कि घर रे खाने से तृप्ति कुन वेणो जा आपको नहीं संतुष्टि थानी संतोष ही हणो कोई है ही कुनी सब ना की लगे कि आज घरो चार दिन खायो है हमें बाहर
0: बाहर लो
1: बस बाहर लो खाओ और थोड़ा एक बात है कि ये बाहर ले खाने से आजकल यहाँ पर जो महिला हो नी और मैं कितना ही शरीर और मैं अधिकार आ बढ़िया
0: तो
1: पहले बात है कि प्रजनन क्षमता हुई जो वो महिलाओं की कम होती जावे ये सिर्फ बाहर ले खाने
0: अरे गरिमा बहन तो बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने बताई और हम तो खुद भी सोच रही थी और खुद भी ये बारे में सोच रही थी कि ए समस्या आप ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रही
1: है
0: आप बहनों ना चाहिए कि सीधो सी ये तरफ गौर करें ये तरफ सोचे कि ए क्यों हो रही है आप बच्ची रो ब्याह करें बस 12 महीना 2 साल बाद हंसता खुलता टाबर हुए घर और महीना बनतर हुए तो अब आपे देखो रुपये रे महीनो 80 पैसा 85 पैसा बच्चियों एड़ियों है जिको की शादी हो गई साल भर हो गया 2 साल हो गया 3 साल हो गया 4 साल हो गया टाबर वही बोले क्यों क्योंकि उमरा जिको खान पान है नी उमरा जिको मतलब बचपन में हमें आप बच्ची हो गई 7-8 साल 10 साल 12 साल 15 साल हमें आप उम्र ध्यान ही नहीं दियो कि मैगी खा रही है ना जो बारला भोजन आवे वही भी खा रहा है सिर्फ वो चिकना चीज खा रहा है तो मोह जो बच्चियों शरीर और मोह ना जो क्षमता हो धीरे धीरे खत्म होती जाए उहे में देखो सभु तूं वॾो कारण की आहे की जेको आपणे शरीर में चवे नी की टाबर न अॻे थोरो ध्यानु वियो छोरीअ न कवता अचार मत खाओ छोरीअ न कवता खटियूं चीजो मत खाओ उहो कारण की होतो तो की जे अगरि छोरीअ खटायो न चरकान अहिड़ा तेल मसाला खाते तो शरीर में गर्मी होसि तो उहो मासिक धर्म वेगो आसे ओ कारण बणता जावे धीरे धीरे हमें अजकल तो दस बारह साल की छोरियों रे
1: समस्या आ जावे
0: और आपको नहीं लगे कि ये समस्याओं की जितो हो सके टाबरों ने ठंडक पावो घरेलू जो इलाज है वो करो ठंडकारी चीज दो और उहे में बाहर में खाने में सबसे बड़ो शोभा बन कारण है कि एक अजीनो मोटो नॉम होया करे वो अजीनो मोटो जो होया करे नी वो हार्मोनल इनबैलेंस करण दो सबसे बड़ो कारण है
1: देखो थे
0: और वो बाहर में खाने में हर चीज रे मोए अजीनो मोटो घटोड़ होवे हमें तो शोभा बहन ए हाल है कि छोटे टाबरों ने घर में अगर थोड़ी कड़ी कोई चीज बनाए देवे नी मायो तो वो मोए दे अजीनो मोटो गतियो हमें ए था कुनी के उए तू आपो रे टाबरो रे ना हूं छोरी की हूं तो छोरो री भी कोए
1: सब रे
0: छोरो रे भी प्रजनन जो टाबर पैदा करन की जो क्षमता हो
1: या तो कम हो जाए
0: वो कम होती जावे भाई ने और ए जो आपो रे बाजार रे मोए मैदा रे हर चीज मैदे सु बनोली जो वे पैकिंग आइटम जो होया करे जंक फूड जो होया करे ओ आपो रे शरीर नो इतो नुकसान करे हमें थो बताओ कि जो कोल्ड ड्रिंक आवे वो कोल्ड ड्रिंक आपो कभी कि टॉयलेट क्लीनर है वो नो कह जी
1: लो
0: तो ये रो मतलब की है कि टॉयलेट कितो आपो रो गंदो होया करे
1: वो नो
0: साफ कर दे भी तो आपो रे पेट रे मोली जरूरी चीज है वो नो भी खत्म कर दे
1: वो रे जो पासाड़े वो नो भी नुकसान कितो
0: पहुंचा कितो पहुंचा मैं वो में की कि ये रे मैं जो शक्कर की मात्रा होया करे नी अगर आप शुगर चेक करो पहले अगर हणो थोड़ी सो आई है तो एक गिलास या एक लीटर या दो लीटर कोल्ड ड्रिंक पियो और वो टाइम टू टाइम शुगर तेज करो चेक करो तो थोड़ी केत भी केत शुगर पहुंचे तो जल्दी शरीर में जाए जाते से आप शुगर न बतावे
1: पर एक ऐसी बात है गरिमा बहन के मैं देखती है के आगे कई काको भाती जो बनता हो गया बनते बनते आगे आयो खड्डो खड्डो आयो तो काको वो तो भाती जो तो हालांकि टाबर हो तो देखो तो वही खड़े काको कौन को खड्डो है आगे खड्डो है आगे खड्डो है वो भाती जो गौर कौन करे दे खड़े हाँ तो हमें तो थोड़ा बात बताई नी
0: हाँ
1: तो खड़े आई बात के एक जो सावधानियों है नी जो हमें आज आप बोल रहा हूँ जो आप अखबारों में भी पढ़े जो आप टीवी में भी देखो जो आप घर रहा बुजुर्ग भी बताओ लेकिन कोई असर ही कौन
0: बिल्कुल और आपको ना मना लगी युवा पीढ़ी हो तो कभी मोह इतना एडवांस हो गया
1: हाँ
0: और ये जगह में तो बुद्धि मारी
1: जाओ एडवांस भले कितना ही हो जाओ अपनी जो अपारो जो खान पान है अपारो जो पहनाव है अपारो जो सिस्टम है अपने हाथ जोड़ बहनों से विनती है कि अपारा जो सिस्टम है बच्चों ने पढ़ाओ सोरा रखो आज रे युग रे दाई उन्होंने बाहर भेजो पढ़ाओ लिखाओ उन्होंने जो चीज चाहिए वो जो सुविधाओं है उन्होंने जरूर सुविधाओं दो क्योंकि

0: भवन राजी हर घर में सब सुविधाओं है, फिर उबेरे बावजूद जो चीज जरूरी है जो थोड़ा कहो ना कि बच्ची ने हर चीज नहीं खाऊ तो ए वास्तव में सच है। और उबेरो रिजल्ट अपने देखो हणो हाल में
1: बिल्कुल आप
0: देख रहे हो के मतलब अगर 100 बच्चियों की शादी आप करनी तो 95 बच्चियों ने अपने डॉक्टर के ना ले जानी पड़े, उन्होंने दवाई दिलानी पड़े तो जाए के कोई अपने बच्चे की आस
1: आस पर ले
0: नहीं जाना भले अपर चलता रहो।
1: और थोड़ा ठाई वो एक बीजो कारण आ तुम थोड़ा बताऊ।
0: हाँ
1: एक होया करे थैलियों में बंद होड़ा अट्टा अभी ठीक है भी है हमें ओ आप पर घर में 4 महीना नो पीपे में पड़ी हो रवे नी तो ओ डब ओ अट्टो कदी खराब कोन होवे
0: कोन होवे
1: और आपको घर में पीस दे नी महीने डेढ़ महीने 2 महीने रे मोय वे में इली लट पड़ी
0: पड़ जावे।
1: हमें आप पर तो बाजार को आपो अट्टो लाजे थानी कदरा पैकिंग होड़ी हो वे
0: खाई कोन होवे
1: आपको तो वो घर में ले आ जे। हमें कभी आजकल नी जको है साइंस है नी विज्ञान ठीक है बतायो है कि आप और अभी घोणी रा बड़द होता था नहीं झुको ओ कवि की घोणियों रे मोय झुको बड़द बहुता था नहीं तो वो बहुता बहुता इतो मजूरी कर लेता था कि उमारी झुको यानी सेक्सुअल पावर झुको होती थी नहीं वो बिल्कुल वरी खत्म हो जाती थी बड़द नो के कैसे हुआ नहीं वनो
0: घोणी
1: में बाई लियो तो घोणी में चलायो तो वो उग्र को नो होतो हमें घोणियों है कुनी
0: है कुनी
1: हमें वे बड़द नो उग्रता नो कम करने वास्ते हमें की इलाज किया जावे और बड़द तो भाई बड़ा आके टुकड़ा है तो बड़ा उसे बड़ा दोसे हमें वरी ये क्षमता नो कम करने वास्ते एक सफेद रंग रो पाउडर आया करे।
0: अच्छा
1: जुको वे नो धान जुको खुआवे घास चारो चट्टो वे में वो मिलावे और वो 4-4 महीने बेहतर चट्टो भेड़ो कर से और वे में वो मिलावे धोड़ो वाड़ो पाउडर आपको वो नाम नहीं ले जाए वो धोड़े पाउडर ना मिलावे और वो हिज पाउडर आप रो अट्टे रे मोय मिलाई दे ताकि वो रे मोय कीड़ो लट नहीं पड़े
0: नहीं पड़े
1: हमें वो आप देख दे कि बड़दरी प्रजनन क्षमता जो को होया करे
0: खतम
1: कम कर खत्म करे कम करे वो आपको भी अट्टे रे मोय मिलोड़ो खाजे
0: ब्याह
1: तो हमें बताओ आप घर की अपन देसी के पास तो आप तो घर जी कि आप यानी खड़ी गोरा गेहूं लाए खाओ वो फायदो करे बरसाती गेहूं होवे जो खाओ और नी जो बाहर ला गेहूं मंगाए मत खाओ और बीजे पास आप बाजार और अटो ला
0: खाओ ले आए
1: और ओ आप
0: देखो ये गर्मी में बहन के आप जो आवे नी पैकिंग वाला आटा नहीं लेके हमें जब गेहूं खरीदिया देखो हर घर में खड़ी कोन वे
1: हां
0: हर घर में खेती कोन वे हर घर में चक्की भी कोन वे असंभव कोन तो आप तुरंत गेहूँ खरीदिया और अपन क्यों सोने की
1: बस सीधी सी बात है
0: तो इसको करना।
1: और एक तो सबसे बड़ी बात आपको बचत की तरफ जा जी आपको बाजार को लाजे वो आपको नट्टो पड़े 60-70 रुपये किलो और आपको हण बाजार को गेहूँ लाजे 35-40 रुपये लाया 5 रुपये पीसा कर दिया आपको 40-45 रुपये में किलो में अट्टो पड़ियो चलो उनका बचत आपको घनी जगह आप बचत
0: एक एक चीज रखे सुख हो रहा है फायदा हो रहा है
1: बिल्कुल
0: तो पे अड़ो काम क्यों नहीं करना आप तो आज विशेष रूप से बहनों ने एज क्यों जो थो थो तीनों विस्तार में बताया कि एज को सब चीज़ों है वास्तव में सोचने के वास्ते ये बगा जरूर अपनी बहनों ने गौर करना चाहिए सोचना चाहिए कि आज तू अगला जो 10-15 साल 20 साल बाद अपने कल्पना करो कि हणो आप पर यह स्थिति है तो आगे बताओ आगे की होते
1: होते
0: ये वास्ते कहने के कोई भी चीज़ आवन से पहले अपन संभल जाओ हमें अपन इशारों दिख गए है और जागरूक महिलाओं हैं पढ़ी लिखी महिलाओं हैं आज भी नारी है जो समझदार भी है तो जरूर ये बात मत गौर करते कि आप लोग खान पान बच्चियों रो खान पान जरूर बदले और उन्होंने इतना पौष्टिक खानो घर रो खानो खिलावे और ऐ सब जो चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं देवे और थो कह जो अचार है ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल गर्मी नहीं जो चीज़ है बच्चों ने बिल्कुल नहीं खुआ ताकि उन्होंने शरीर की को पौष्टिकता है वो बनी उड़ी रहे और जल्दी से जल्दी वो आपकी माँ बन जाए।
1: हमें देखो शुरू शोभा बहन तो बात करी है तो कभी नहीं बात शुरू हुई है तो दूर हलक तक जाएगी हमें उए रहे आज हूँ बात करो कि जो हमें आप और बच्चियों रही आपको बात करी हमें आजकल भी यहाँ भी मोड़ा
0: तो
1: 15-17
0: हमें लोग आपकी मूर्खता सु सरकार से ऊंचे जा रहे
1: हमें होवे की है हमें आज री जनरेशन है पढ़ सो लिख सो मोरी नौकरी कर सो नौकरी करन ना जावो तो कह टिफन ले जाओ शर्म आवे हाथ में बस एक पर्स रखियो जी कह रहे मैं मोबाइल घतियो पेन घतियो हवा होया रवन टिफन ले जाओ शर्म आवे नौकरी करी दस तू छे हमें उए रे मोए आपो टिफन नहीं ले गया तो आपो बाजार से मंगा सो ऑर्डर कर सो और हमें ऑर्डर एड़ा हुई कि आपो ना झट गाड़ी में आया आपो सामान आपो घर रस्ते में घर गेट में आ जावे तो छोरियों ना सबसे बड़ी फायदो हो रही छोरा है चाहे छोरियों है चाहे महिलाओं है जो गृहणी है जो कोई है वो ना घरे मुंगड़े मथे खानो आवे तो वो की सोचे कि हूँ

0: महीनी तो हूँ इतो खर्चो कर सका न्यार में से, पर ए ठाकुर नी की घरों ही घणो लूण मिर्चों रो परोठो आपो वो बनाए पा ले जा देनी तो वो बाजार खाने से घणो भलो है,
1: खावा भलो हो जावे, वो 10 गुना भलो हो
0: जावे। और वो जद मोड़ियां परनी जियो वो 10 बरस 4 बरस नौकरी करी और मोय रोज बार लो खानो खायो ए हो जियो शरीर खराब। हमें बताओ परनी से जितते तो थोड़ा शरीर इतना मोय, और देखी जत में मोह जिम जाजे मोह उठ जाजे
1: वो सब बकवास है सब
0: मोय, पेट में आप भलो खाए लीजिए पछे भले सब कहरी जरूरत है
1: कमी के अगर जो नींव है नींव नींव ना आप इतनी मजबूत बनाओ के उर मते भले कितना कंगूरा लगा दो
2: बस
1: नींव अगर डगमगा रही है मत एक ही कंगूरो टिके को
0: टिके
1: भी को छोटी सी और समझदारी भी बात है कि घर में बच्चा रो खान पान शुद्ध और सात्विक रखो, घर रो खानो जो को पहले है तो अपनी परंपरा होती वो खावन पीवन में हमारो बरोबर ध्यान दो, बाकी सब चीजें हैं उन्होंने सुविधा है बच्चों ने जो तो जरूर करो, लेकिन उम्री जो खान पान उम्री जो पारिवारिक जो सुविधाओं है उन्होंने आगे की करो ए बात उन्होंने दिमाग में बैठा करो।
0: हाँ
1: टाबर 20 वर्ष रहो गए 25 साल रही होगी बच्ची आप आ जाओ ना तो रसोई में बांट रहे हो न तो फिर उन्हें बता रहे हो कि तना जाता आता जाए कि
0: बल बूंद रही खाई
1: कोई बात समझा रही है माँ, तो ए मारी गलती है कि बच्चियों और ये सब स्थिति हो रही है। वास्ते आप और आज के गरीबों में हाथ जोड़ के सब माओ से विनती है कि बच्चियों विशेष रूप से ध्यान रखे ताकि शादी होते जल्दी से जल्दी वो माँ बने और घर वाला भी खुश समझी को
2: परिवार भी खुश
1: भी खुश बस, तो और खुशी के माहौल में तो मना तो ठंडा ऐसी खुशी
2: सुनाए
1: तो एक गीत बने

0: वासा वागरी मा बेन गीत छोटो से छो सुना लियो और अपे बात कर रहा था आज रे बच्चियों रे जो कि आगे देश रो भविष्य है।
1: बिल्कुल
0: बात में बात निकले नहीं तो हर मौसम री बात पहले दिमाग में आवे के कोई भी चीज हमें जान बरसात ही जावन वाले आज चर्चा करी बरसात आड़ेंगे तो आज से बरसात आवन आ रही है तो आवन से पहले अगर पहाड़ कोई बंद दे दिया था
1: और बढ़िया है।
0: मतलब हमें जब अपने शिक्षित परिवार है आज युवा वर्ग पढ़ी लिखी है हर एक माँ पढ़ी लिखी है तो वो ना चाहिए कि वो कोई भी जो चीज है और पहले से एहसास करावे टाबरों ने की आप ने की तो बारिश आने वाली है तो वो रहा जो अपन पहले से ध्यान रखना है
1: और अपर की कौम है बुजुर्ग उसे घर में बड़ा उसे उम्र की है कि ठोकर खावन से पहले उन्हें संभालन वास्ते कवे कि पहला संभाल आगे ठोकर है।
0: तो बारिश आवन वाली है तो ये बरसात रे में देखो पानी भी तो आप हमेशा चर्चा करो
1: करे
0: जल है तो कल है तो हर जगह लिखड़ा भी बैठे देखो तो
1: सही है
0: जो मंदिर वे या कोई
1: सब जगह
0: कॉलेज कई सब जगह है लिखोड़ पर उन सुधार को नहीं मिली लिखोड़ी चीज अभी पढ़ाई या आंखें से पढ़ ली कौन सा सुनी दी जोड़े कौन सा निकाल दी वो मैं गौर करना जरूरी है बस इतनी जरूरी।

0: अगर कोई बात बोल रहे हो जहां में आप ही बोल रहे हो,
1: हाँ।
0: कोई भी बात बोल रहे हो आप सुन रहे हो, तो उसमें केस न केस तो गौर करो उनका कुछ 5% 10% भी अगर आपने
1: हाँ। बदलाव लावे नहीं
0: हाँ।
1: तो मैंने लगे वो भी बहुत बड़ी बात है।
0: जो थानो पौनी री बात कही तो सबसे बड़ी बात की होगी कि जो यहाँ पर नल आया हमें यहाँ पर घरों कन्नलो घर है वो वर्षों से बंद पड़ी है, वो मोटी बार है वो बवे
1: बोल रहे
0: कहना मतलब को नहीं पाड़े आना की टी बंद करो या वो आगे बोतल लगाओ, और जिके दिन पौनी री किल्लत था से वो दिन वो नल रास्ते पाड़ो थी लड़ी से कि भाई वो पाइप लगाई वो पाइप लगाई थी, तो आपको उसको पहले आपको आपकी व्यवस्था तो नहीं कर दे कि इतने दिन तू बवे भी तो वो कुछ आपको संकलन कर ले जाए
1: संकलन कर ले जाए वो पानी ना भरो कर रखो या पानी की
0: अपारे घर कोनी बात कोई भी जगह अगर पानी बहुत तो अपना दिखे तो अपारे स्वभाव में यह चीज होनी चाहिए कि आप तुरंत नल ना बंद करो। अगर यह चीज हर इंसान में आ जावे नी तो थे देखो 6 महीनों में फर्क पड़ जावे ना कि आगे आप खुद पढ़ो आप देखो भी हो कि आगे भविष्य में पानी की किल्लत हो जाते है अगली पीढ़ी ना पीढ़ियों ना पानी बहुत भारी में पानी की कमी हो जाते है, तो अगर जे आज आप सुधार कर लो तो ऐ चीजों कोई जरूरी को नहीं आप पानी आप खुद बचा रहे हो तो आप क्यों किल्लत हो
1: और आप सोचो कि आपको आप ही आवन आड़ी पीढ़ी वास्ते कर दे पड़िया ऐ तो नहीं कि आपको पूरे बीते दिशा वास्ते कर दे आपको आप ही पीढ़ी वास्ते तो कुछ कर रख दे
0: ये नहीं कि हमें आप जब बचत रो नाम लो कोई जरूरी को नहीं कि बचत रुकी पैसे रही जाए पैसे रे अलावा कई सारी बचत है दिल में अगर जब गुणन बैठो नहीं तो ठीक होने आवे बचत हुई वाणी हुई
1: तू ऐ बात तो थी बोलन रे मोए सबसे पहले आप बोलन रे मोए बचत होनी चाहिए
0: ठंडी बकबक करता जाओ तो मतलब बचत हुई पानी री बचत हुई ऊर्जा री बचत हुई बिजली री बचत हुई सबसे बड़ी समय री
1: बिल्कुल सही बात है तो बहुत बढ़िया बात बताई है था पर बहनों ना
0: इस बगा अगर समय अपने हाथ में है तो अभी मार धोड़ो दिन उगा सको नहीं अगर ये बात है केड़ो काम कर मार धोड़ो दिन उगा धोड़ो दिन उगा यानी कि सचान कोई बीजो दिन को
1: नहीं
0: पर काम एड़ो करके वही सुप्रकाश हो जावे और सारा सुरा हो जावे तो ऐज को छोटी छोटी चीजें है नी गरिमा बहन यहाँ तो बहनों ने ठाप रही पर एक तरीके से जामवंत बनने पड़े
1: हाँ
0: उन्हें जो ध्यान है तो हनुमान जी जो कि इतना शक्तिशाली भगवान है उन्होंने भी एक कार की आपकी शक्ति ना याद दिलाई जामवंत जाना हो समुद्र ना की
1: लान लान कर दिया
0: तो अपोरी बहनों भी पढ़ी लिखी है होशियार है समझदार है सब चीज है लेकिन आलस्य हो जावे लापरवाही हो जावे या अब कोई नहीं कोई बात गौर नहीं करे फरलू से निकल जाएगा मैं ठीक है देख लेता ए देख लेता आड़ी चीज छोड़ दे और थोड़ी सी सावधानी आप जीवन में उतारे
1: लापरवाही छोड़ दे
0: जीवन में सावधानी उतारे नहीं तो कुछ टाइम में थोड़े ही वर्षों में आप खुद देखो कि अपारा गांव अपारा शहर और अपारा देश पाछो उगे स्तर में आ सके सोने आई लंका भले सोनो महंगो हुई
1: भले महंगो है लेकिन आपको वो तक पहुंच सकते
0: आराम से
1: हमें अगर आप पर आज रहे समय में सब नेता कहे कि आपको ना विकसित भारत रो निर्माण करना है हमें विकसित भारत रो निर्माण आपको घरे बैठा तो विकसित भारत रो निर्माण कर कौन सकते लेकिन छोटा छोटा जो आपको कदम उठा सो नहीं ये तो धीरे धीरे आप भारत देश रो विकसित भारत बन जाते नहीं तो उसके वास्ते अपन देखो आप चर्चा केस कर दे कदे के दुआ जाजे आपको बात करता था वन विकास री कि आप जो भारत आप शहर जो देशन में शहर है
0: उसे
1: अपन अगर विकास करना हो तो वन विकास सबसे बड़ो है कि आप हमें ये
0: रमी रमाए
1: आप यते रख रहे मोए आप सोचिए कि आप पानी कुन मिलते पड़ियो वनों और विकास कमी होते पड़ियो पेड़ों की कमी आ गई है कटाए अंधाधुंध हो गई पड़ियो नी तो आपको ना यह चाहिए कि आप कोई गड़ी गड़ियों में बहुत पेड़ भले नहीं लगाओ लेकिन आप महिलाओं होड़ी ग्रामीण महिलाओं है तो वो आप गाँव में
0: खेतों में लगाओ बाड़े में लगाओ
1: और जो हमें क्या भी कि शहरों रे मोए फ्लैट सिस्टम है हमें मत्था मत्थी घर बनो रहा है तो हमें कहने नहीं है तो एक गैलरी तो है तुम्हारे कहने वो गैलरी चार पौधा लगा तो
0: आपको
1: घर में तो शुद्ध वायु वास्ते छोटी छोटी बातों एडियो होया करिए शुभा बहन की अगर आप बहनों घर से शुरुआत करेंगी तो टाबर आपे देख देख
0: पाती गरिमा बहन के कोई भी चीज री शुरुआत तो जीरो से हो गई
1: सही है बिल्कुल
0: कोई भी चीज री शुरुआत शून्य से हो गई और पछे वो एक दो तीन चार पांच छह मतलब पिटा के आगे
1: आगे चले
0: वन री तो बात करें वन विभाग जो आप कार्यरत है वन विभाग में खूब सारा जो आप सरकार प्रयास करे और वन लगाओं वगा वनों ने बचाओ वगा वन एक तो लगाओ और एक बचाओ देखो
1: बे
0: बहुत बड़ी बात है एक तो आप वन लगाए के वो मोटा करो पौनी पाओ मोर ध्यान रखो वो मतलब पैसा खर्च करे आप सरकार वो पास आड़े वो जालियों लगावे क्योंकि पशुओं से बचाव।

0: जब जाके वो पौधो बने, जब जाके वो
1: पेड़ बने
0: और एक सेकंड लगे कटाई
1: पलटते,
0: तो कटाई जितनी तक नहीं रुक से नहीं तो वन आगे कॉकर बढ़ते
1: भले कितना ही लगा,
0: कटाई भी अपर कारण हो रही है। हम ए दरवाजे लगोड़ो भलो कौन बीजो लगाओ, ए अलमारी लगोड़ी है हम भलो कौन नयो फर्नीचर बनाओ, वो वे नए रे चक्कर में दिन ब दिन अपर वन और दोहन हो रही, अपर वन हो रही
1: कटाई हो रही है।
0: तो मैं कहूँ जो आवश्यकता जो आप शौक है शौक पूरा करो, लेकिन एडो पूरा मत करो कि अपोरे फायदे सु अपोरे सुख रे बगा बीजी चीज रो हानि हो रही है।
1: बिल्कुल
0: वे हानि री तरफ अगर अपन पहले ध्यान दो तो अपोरो वन है जो हंसता खिलता अपन दिखे।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपको मन में है सोचे कि आप पेड़ो ना कुंड काट के मौ कद काट के पेड़ो ना, लेकिन आपको घर में तो है देख जे कि ए आटो बनी हो है तो
0: आई के लकड़ी
1: लकड़ी के संकेत तो यूर आपको दोहन करियो है
0: तो आई के बनी है नहीं,
1: तो आपको नो ए सोचना चाहिए कि आपको जो को आज बात कही नहीं कि आज फर्नीचर आपको मिस करियो, आज ए कुर्सी है तो ये नो आज
0: तक हटाओ मुझे लाओ
1: पागो भागियो नोको
0: नोको
1: ए कौन सोचे नहीं कि पागो भागियो तो आपको घर में
0: ठीक करा
1: भी नहीं
0: करवाओ
1: वो ना ठीक करवाए पाओ।
0: अरे गरिमा बहन दोनों को दान बताई से हंसो आसे अपोरे हमें तो वॉकर बीजा नया चली है विज्ञान की बात है वो ये अगे गौर में ना मिट्टी की बनती होड़ी टाबरों ने बैठा हूँ बगा टाबर बैठन तो
1: बैठनी
0: बैठनी मिट्टी से पछे लकड़ी की बनती
1: हाँ।
0: सुतरा डाम था ना हरक करता टाबरों का और लकड़ी की अड़ी छोटी सी बना दे टाबर बैठो
1: बिल्कुल
0: ओ एक बना के उए में कोई 50 टाबर
1: पीढ़ियों
0: पीढ़ियों मतलब अनार देखती है बात है मौजे घर में रखोड़ी है वो आज 80 साल पुरानी तो उए में वो टाबर है जो बैठ जावे
1: बिल्कुल
0: रुकी बिगड़ी
1: हाँ लकड़ी है लकड़ी पाई है बर्तन
0: तो एक टाबर दो टाबर उन बैठे हमें उन्होंने नौकी बड़े बनाओ दीजिए तो वो चीज गलत है उए चीज ना उए पॉइंट ना आपे जितने तक नहीं पकड़ सो नहीं जितने तक आपे कोई भी चीज की बचत चाहे वन की बचत हो चाहे पर्यावरण हो चाहे जल हो चाहे बिजली
1: हो लगे कि ना पुराने टाबर ये मत्थे कलर कराए हुए हुई नवी मत्थे नवी नवी अक्षर लिखा है हूं का आज तो एबीसीडी हुआ मत लिखा है अक्षर पाड़वा है होई की नवी अगले नो नहीं पसंद आई वरे मत्थे कलर कराए हो एक दो दिन
0: चार नवी बात
1: कदे कोई श्लोक लिख दियो ओम नमः शिवाय लिख दियो सर्वे भवन्तु सुखे कुछ भी लिख दियो
0: वो तो बात है ना कि वो ना नवी कर सके
1: नवी कर
0: सके तो म्याले वाली बात खेल लिया है नर तो हुनर नहीं तो खर
1: क्या बात कही है सुबह बहन
0: तो अगर हुनर नहीं है तो वास्तव में खर
1: रहे
0: घरों में अभी अपर माइक क्या था कि नर तो हुनर नहीं तो खर अगर नर में कुछ कलाकारी है तो नर है नहीं तो खर है जी गदो
1: बिल्कुल
0: वो गधे रे समान हो जावे तो ये वास्ते एड़ी को छोटी छोटी बातें हैं अपर बहनों ने चाहिए कि इन्हें जरूर गौर करें और खुशहाल जिंदगी जिए आप भी और
1: आप
0: गाँव भी आप शहर भी हमें देखो गरी तो कह रही है अपन बखत हो रही है पूरे पण में आ इच्छा है ये गीत आ सुन
1: तो इच्छा मो जरूर पूरी करता हूं सुना तो बहनों ने एक गीत

0: चौमासो तो लगोड़ो और थो सुनायो। पर देखो आज गरिमा बहन आप वो ठाकुर जी ने याद करियो, इंद्र भगवान ने आप याद करियो, मन लगे कि आज आप धरती मथे बरसात जरूर आसे, धरती मारी तेज बुझ से। हाँ और अपा जो गणो राग आला पी वन विभाग री हरियाली री, तो आप पेड़ पौधा नहीं लगा इसको घर बाहर अगर गए रही है में छोटा छोटा भी अगर आप पौधा लगाऊं, पौधा क्यों लगाऊं, एक पत्ता बेकार हो सके, टमाटर लगाओ, तूरी लगाओ, कद्दू लगाओ, सब चीज घर में उगे,
1: हरी उगोड़ी ऑर्गेनिक खेती आप जिसे
0: ना पौधे लगाओ, धोना लगाओ, आराम से पूरी बढ़िया शुद्ध वातावरण भी अपन मिले, हवा भी बढ़िया मिले और भी पैसा घर
1: और घर अपन घर देखी जतने के हां हमारे शुद्ध आई।
0: अच्छा आपे साग बनाओ पे पुदीनो चूट भी आपे बता तो मेरी खुशबू हो
1: जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
0: ओ शुभ को मैं देना, देखो देरी करो मत और बरसात
1: अच्छा भी है,
0: कोई भी चीज अगर आप मौसम अनुसार कराए नहीं तो वो फायदो अपन तुरंत मिले। भाई बे मौसम रे आना सागरी बैसाख जेठ में अपन पुदीना लगाओ तो बल से
1: सही बात है।
0: हमें बरसात आसे वो माहौल जब धरती रो और बन से नहीं समय में आप जो लगाओ नहीं है चीजों तो चीजों जरूर मैं खुद रहे उगा उड़ी भिंडी उग गई आप गमले में लगाओ, भिंडी छोटी छोटी बढ़िया उग गई, तूरी उग जावे, कद्दू फट उग जावे, आप रह करेला हुआ देखो बीज भी कई बार आप सब्जियां लाओ देखो उसमें बीज पकौड़ा निकले, वो पकौड़ा बीज है आप बेड़ा कर रखो और बरसात में उन्होंने लगाओ।
1: सही बात है,
0: तो सब्जी यहाँ पे घर उगा सको, हमें तो देखो छत मोटा मोटा अगर डागोड़ है मोटा मोटा तो वो नागोड़ों में भी
1: लगा सको, हमें हर चीज
0: रहे सुविधाओं है तो वो सुविधाओं रो जरूर फायदा उठावे और खाली समय रो सदुपयोग करे, और वो खाली समय रो सदुपयोग करते करते अगलो हफ्तो आसे आप पाछा मिलसो जानो करसो राम राम के थो
1: बड़े बरसाती बात करसो
0: कौन जब करसो राम राम के थो की कौन करियो की छोड़ियो। ठीक है तो आज तो मैं बहनों से सीख लिख सा करसो
1: राम राम
0: राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम पणिहारी। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
5: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
8: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी जैसलमेर का

0: का गोल्डन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। प्रसारण होगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

सीता के पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे, हाय उनकी वो निगाहें, दिल देखे दिल की राही, कोई उनसे

कोई दिल है जिसमें प्यार नहीं, हर उनके वो निगाहें, दिल देखे जिनकी राहें, कोई उनसे जा

दिल देखे जिंदगी कोई उनसे जाके पूछे हम

0: रस्ते थे रस्ते ये मतवाले के बच्चे हर तू नगमे ही नगमे हर तू मस्ती ही मस्ती मिल जाती इसमें मेरी थी बहार सही हर उनकी वो निगाहें दिल देखे दिल की राहें कोई उनसे जाके पूछे हम क्यों ना उन्हें चाहे हर उनकी वो निगाहें
1: लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लैक्ट्रोज देते हैं, टेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सेंसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का 2 गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत का हाथ, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला,
4: सुभानल्ला बाबू सुभानल्ला।
3: मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला,
4: सुभानल्ला बाबू सुभानल्ला।

0: निगाहों की भाभी लगी जा रही है।
1: खून दिया की लहरों पे ये गेंद बल्ला,
0: सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह।
2: मोहब्बत का हाथ जवानी का पल्ला,
0: सुभान अल्लाह बाबू।

0: रही है
1: तारे जमीन पर उतर आए भल्ला
0: सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह
2: जवानी का पल्ला सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह।

0: ये आशिक के दिल पर हसीनों का हल्ला
1: जवानी का पल्ला
2: सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह।

0: ಕಾಪಿಲ್ಲ ತುಫಾನಯ್ಯ ಬಾಬು ತುಫಾನಯ್ಯ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಾ ಹಾಲ್ ಜವಾನಿ ಕಾಪಿಲ್ಲ ತುಫಾನಯ್ಯ ಬಾಬು ತುಫಾನಯ್ಯ
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: 请尝尝大大大的。
1: 不理不理，不理不理，没不理。

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे
0: मन चाहे की
2: मन चाहेगी।

0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये है सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं, आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जैनवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की, गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

0: किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने, ये है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, ठुराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी है, संगीतकार शंकर जयकिशन है।
1: तुम मुझे यूं बोला।

जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे हो।

0: तुम मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे।
1: यह आवाज़ थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से।

अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

ठुमक ठुमक चल है जब तू मेरी नस नस खन के तू आई है सजनिया।

0: ये गीत फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।
1: मन

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी अपनी फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर

0: बिछड़ेंगे ना हम,
1: फिर भी तन मन देखो देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: दोस्तों आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की मुद्रों की ये मधुमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक छलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सके।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना बैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: हमारे साथ ये यज्ञसेन

0: पाबंदी का व्यवहार कर रहा है।
1: ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञ सेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंके।
2: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: Sunder. Adi Sunder.
1: Maharaj, beta.
0: पुत्र गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से

0: सुनो, इस गीत के बारे में अपने आप को आप पर छाल कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभी मैं कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर
2: मैं क्या पूछूं? मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ अरे गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई

0: विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
1: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
2: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
0: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
3: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
0: दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
3: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
1: जो आज्ञा।
0: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
2: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
0: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
3: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्य का भी अभिनय देख लिया जाए।
2: जो देखना था सो देख लिया।
4: क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
3: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह, आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
4: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बांध ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
4: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रनिवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
4: उपाय उपाय, हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
4: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम करते हो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे।
2: अरे गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
3: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी।
3: पांव में क्या बहुत कष्ट है?
5: इस दुष्ट गौतम के नखत बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती।

0: उधर मुझे अपने प्यारे सुनहरे अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
1: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
0: तो तुम बकुना बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहरे अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
2: ये दीदी महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए।
3: आ हा हा,
2: तुम्हें देखो तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
4: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुमित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंतृत हमसे मन पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सुन पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रूप। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
2: महाराज, तुम धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
4: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा?
2: चलिए झूला गृह की ओर।
4: झूला गृह की ओर?
2: हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वसंत आगमन के उपलक्ष्य में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
4: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
2: कैसे अचरज की बात है कि...
4: क्या हुआ?
2: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन उधर चली आ रही है?
4: क्या मालिका आ रही है?
2: और क्या?
4: तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
2: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
4: ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसमें इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
2: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा।
4: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
2: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
4: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
1: दुर्लभ प्रिय है, हृदय छोड़ दे तू बिन्ने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है, हालांकि जिस तक अपनी पहुंच ही है। मुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है?
4: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता

0: कारण खोल कर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायक का बकुला बलका उसके पास पहुंच गए।
0: अरे, ये बकुला बलका सार श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
1: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
1: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। ये सखी हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना। वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो। अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ
1: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई कोपले फूट आई हो।
2: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
1: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य है, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य है।
2: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
1: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
3: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
3: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगु लता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
3: अरे ये क्या स्वामिनी,
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
3: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने पर काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है
3: देवी? तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
3: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूल अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूर पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
3: तो क्या महाराज को ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
4: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: आपके पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी।
4: अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
0: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
4: सच? बड़ी भाग्यवान।

0: इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने होगी तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है।
0: हाँ
1: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया। आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर दो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
0: सखी
1: ऐसी बेसी पैर की बातें ना कहा करो। जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
0: ये सब झूठ है
1: उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
0: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
1: हाँ
0: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो।
1: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कही है।
0: सच
1: फिर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है।
1: लो इस पैर में भी महावर लग गया अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दू। लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
0: अरे क्या सोच रही हो
1: सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए

0: गुच्छा कान में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
1: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
0: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालरका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: आई गौतम महाराज भी
0: क्यों रही बकला वाली का, सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
2: आर्य गौतम, आर्य इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं।
1: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
1: क्यों भद्रे, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
2: महारानी को जाकर सूचना दी क्योंकि आपके अनुसार हमने अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ली।
1: भद्रे, तुम जा सकती हो परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
3: मालविकाग्नि मित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: Lines, light, sound, camera, action!
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप

0: खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
1: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
0: है। बिल्कुल।
1: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी।
0: हाँ।
1: वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने पहले किसी लेडी कपड़े का नाम सुना तो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: बिल्कुल।
1: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
0: हाँ।
1: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
0: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चुनरिया पर ही आपकी थी?
1: मैंने खुद लिखा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
0: आपस का
1: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात
1: टाइप नहीं हुआ,
0: टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ।
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखो। तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। सातवीं फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सैन
0: को जगह ही रहता था।
1: अरे
0: मतलब, और फुल तैयार बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तेफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा?
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं।
1: हाँ?
0: इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वो ही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह,
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, क्या रे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में लाके दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमान में तू, जगजीत जी का गाया हुआ।
2: नीले नीले आसमान में तू है, नाज़ुक सी कलियों में धूप है।

कल की एक आस तू है, सब दूर है पास तू है, जब धूप है छांव तू है।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। मैंने कहा ये शॉट यहां से हटा दीजिए आप, और इसको यहां लगाइए और इसको यहां लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा। धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये बीजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह। संगीतकार बीजू
0: शाह। पहली बार मैं संगीतकार बीजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो बीजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। लक्की सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: आप।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैं ठीक है।
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा। मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेस को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत गाना
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया। उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते और कहीं हमें न पढ़ने को मिलेंगी ये बातें न जानने को मिलेगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे।
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं?
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। तो, क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग थी सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता।

बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता।

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं, और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये, तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है। मैं
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को फील कर रहे हैं,
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ जाऊंगा, वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई, और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
0: बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना, तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अन्नू मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें आपके गीतों को?
1: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ आ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको ले जाता हूँ, मैं नहीं लिखता।
0: अच्छा।
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
0: अच्छा।
1: हमने फायदा क्या इसका है, तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम, मैंने कहा लिखो गया अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया, और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
0: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल लिखवा
0: देते हैं, सिचुएशन बतानी पड़ती है ये।
1: हाँ जो भी सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है।
0: हर रिकॉर्डिंग में
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती
0: है। तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, संगीतकार है, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दे, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था। तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए। ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5,000 गाने लगभग लिखी और रिलीज भी हो गई, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी, जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी,
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है, वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली अच्छा, यहाँ पर भी चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आपने
1: जिक्र किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है।
0: जी जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा। तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ
0: बात
1: कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
0: अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा आप शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा, लेकिन मेरी औकात ही क्या, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
0: उनकी महानता देखिए आप,
1: लेकिन उनकी ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया, तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं, लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना।
0: जी जी।
1: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
0: कि मैं कुछ नहीं लेना,
1: मैं कुछ नहीं लेना।
0: बहुत बड़ी बात सर।
1: तो ये बहुत बड़ी बात है,
0: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
1: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बता।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, आप ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो, लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत ये है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
0: नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, हिमेश भाई ने बना भी दिया। हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ नए गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी, जी।
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर
0: वो हो गया।
1: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
0: बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा।

0: बहुत प्यारे तरीके,
1: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
0: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
1: जी जी।
0: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
0: वो कालजयी हो गया।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
0: जी, जी।
1: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
0: जी,
1: देखिए आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा, और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए। और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल,
0: बिल्कुल।
1: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
0: बिल्कुल।
1: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए, काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
0: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया?
1: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया।
0: दूसरे गाने का?
1: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया, ओढ़नी चुनरी है तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
0: अच्छा।
1: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूँ तो उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर अंदर अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैं लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन्होंने गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो,
0: बिल्कुल,
1: तो कुछ ना कुछ होगा।

0: ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी।
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सबसे मैं मिला हूँ
1: जी। और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार है सुधाकर शर्मा, संगीतकार है हिमेश देशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, आनंद चरघी कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, सुपर है डुपर है अपना

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवा साथी सुन रहे हैं युवन। मैं अर्चना आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू जयंती, गुलजारी लाल नंदा जयंती, आत्म अवलोकन करें युवा और पीएम डिजिटल इंडिया के बारे में। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू जयंती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महान भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती हर वर्ष 4 जुलाई यानी कि आज ही के दिन मनाई जाती है। उन्हें मन्यम वीरडू यानी कि जंगल का वीर भी कहा जाता है। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पंडरंगी गांव में हुआ था और यह एक सन्यासी और स्वतंत्रता सेनानी थे।

जिन्होंने 1922-24 के प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्हें आदिवासियों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1882 के दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। इस कानून ने आदिवासियों को उनके जंगलों में जाने और पारंपरिक कृषि करने से रोक दिया था। और गुरिल्ला युद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध यानी कि छिपकर वार करने की तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए। और 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें कोयरू के जंगलों में पकड़ लिया और शहीद कर दिया। उनकी वीरता और उनका योगदान, हम भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1986 में उन्हीं के नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया था। और उनकी जो रंपा विद्रोह की जो रणनीति है, उनकी प्रतिमा जो स्थल है वहाँ है, जो सम्मान के साथ है, वो आज उनको इस जयंती पर है वो याद किया जाता है।

0: पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
1: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले, उनके सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने, और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके, और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का पूर्ण

0: सपोर्ट मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है। चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण की या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी है। तो हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूं हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े। मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था गांव जैसे आज कोई 1000 युवा साथी जुड़े हैं। प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गाँव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: अपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा हुआ विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था, और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, अब हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना, और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं, बहनें, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले, और एक जन आंदोलन का रूप लिया, गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए गए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे

0: शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जो हम वृक्षारोपण करते थे वो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहनें, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी, अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे, और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई, और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर चार जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है तो मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है, और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और

0: धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूं पूरे विश्व में, 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ, 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाए, अपने परिवार को जोड़े और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम दिल्ली रेलवे से पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ देवेंद्र सूरा से बातचीत। श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे गुलजारी लाल नंदा जयंती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा की जयंती हर साल 4 जुलाई को मनाई जाती है। वे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने दो बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रम संबंधी समस्याओं पर शोध किया और बॉम्बे के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नंदा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें भारत के राजनीतिक इतिहास में उनकी बेमिसाल सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। नंदा जी ने भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल भी गए थे। बात करते हैं उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, तो वे भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहली बार 27 मई 1964 से 9 मई 1964 और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक उन्हें यह दायित्व मिला और उन्होंने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष और बाद में योजना मंत्री के रूप में देश की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनसेवा और राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए

उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 15 जनवरी 1988 को उनका निधन हुआ था और अहमदाबाद में स्थित उनकी समाधि को नारायण घाट के नाम से भी जाना जाता है। श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे पीएम डिजिटल इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है पीएम डिजिटल योजना, जिसे 1 जुलाई 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस दूरदर्शी योजना ने देश में तकनीकी क्रांति ला दी और शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल तथा नागरिक केंद्रित भी बनाया। और इसके 3 प्रमुख विजन है, यानी कि विजन क्षेत्र है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन और सेवाएं, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। बात करते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में, देश के जो सुदूर गांव और वहां तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, हर नागरिक को एक सुरक्षित डिजिटल पहचान देना और क्लाउड पर निजी स्पेस है वो उपलब्ध करवाना है। मांग और शासन सेवाएं, यानी कि सरकारी विभागों को आपस में जोड़कर सभी सरकारी सेवाओं को मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में उपलब्ध कराना, जिससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, और सभी नागरिकों को डिजिटल रूप में साक्षर बनाना, डिजिटल संसाधनों को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना और सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना, इसका है वो क्षेत्र है। और इसके 9 स्तंभ है, जिसमें ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये इसके 9 स्तंभ हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो प्रमुख जो डिजिटल उपकरण और उपलब्धियां अगर हम इसकी गिनते हैं तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डिजी लॉकर, उमंग ऐप, भारत नेट, तो ये सारे जो ऐप है जिसमें UPI की बात करते हैं, तो उदाहरण के तौर पर कि बिना कैश के तुरंत मोबाइल से भुगतान करने की तकनीक, जिससे आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार बन चुका है। और जो डिजी लॉकर है, उसमें कागजी दस्तावेजों की जो आवश्यकता है उसको खत्म करके सीधे सरकारी विभागों से प्रमाणित डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा, और उमंग ऐप यानी कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर केंद्र और राज्यों की 2400 से भी अधिक सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का जरिया, भारत नेट, इसके जरिए देश के 2,00,000 से अधिक गांवों और ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। तो इस योजना के द्वारा है वो जो कह सकते हैं कि एक डिजिटल जो विशिष्ट एक डिजी लॉकर या भारत नेट या पूरे हमारा जो भारत है उसका डिजिटल करण हो गया है। तो हमारा पूरा जो भारत है, जो गांवों से लेकर शहर तक पूरा है वो डिजिटल के माध्यम से है वो कार्य कर रहा है। तो ये जो योजना है यानी कि पीएम डिजिटल इंडिया योजना है, ये इसका यही विजन है, यही उद्देश्य है कि एक डिजिटल रूप से भारत को सशक्त बनाना है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे आत्म अवलोकन करे युवा। जी हाँ दोस्तों, आत्म अवलोकन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन युवाओं के लिए खुद को पहचानना, अपनी कमियों को सुधारना और जीवन में सही दिशा चुनने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है आत्म अवलोकन। आज की जो भागदौड़ भरी सोशल मीडिया और स्क्रीन से घिरी जो जिंदगी है, उसमें युवा अक्सर बाहरी दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे में खुद के भीतर जागना, अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आत्म अवलोकन है वो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे स्पष्टता आती है, भावनाओं पर नियंत्रण होता है, गलतियों से सीख और सच्चा आत्मविश्वास है वो दिखता है। जी हाँ दोस्तों, यह समझने में हमें मदद करता है कि आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं। तो ये जो क्लियरिटी आती है वो आत्म अवलोकन से ही आती है, और जो गुस्सा है, तनाव है, भटकाव है, ये सब कम करके मानसिक शांति भी देता है आत्म अवलोकन। और जो गलतियों से सीख है यानी कि जो लर्निंग है, वो पुरानी गलतियों को दोहराने के बजाय उससे अनुभव हासिल करने में मदद करता है, और बाहरी दिखावे के बजाय अपनी असली ताकत और कमजोरियों का ज्ञान भी हमें करवाता है आत्मावलोकन। तो युवा आखिर करे कैसे आत्मावलोकन, तो यहाँ पे कुछ है वो साधारण से टिप्स दिए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम युवा है वो आत्म अवलोकन कर सकते हैं। तो खुद से सही सवाल पूछे, यानी कि रोजाना या हफ्ते में एक बार अकेले बैठकर खुद से ही सवाल पूछे कि मैं जो करियर या पढ़ाई चुन रहा हूँ, क्या वो मेरी पसंद है या सिर्फ दूसरों का दबाव है। मेरा कीमती समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, जैसे रील्स है, सोशल मीडिया है, फालतू गपशप में मैं कहाँ अपना ये समय बर्बाद कर रहा हूँ, और क्या मेरी संगत मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे पीछे धकेल रही है। अगर आप खुद से ये अकेले में बैठकर सवाल पूछेंगे तो आपको जो अपना एक कह सकते हैं कि भविष्य है वो दिखने लग जाएगा कि आप किस वे में है जा रहे हैं। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स है वो आजकल बहुत जरूरी है, यानी कि दिन में कम से कम 1 घंटा फोन और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहे। इस खाली समय में दिमाग को शांत होने दे ताकि आप गहराई से सोच सके कि पूरे दिन है वो आप क्या कर रहे हैं, आपका समय कहाँ जा रहा है, और अपने विचारों, डर, खुशियों और लक्ष्यों को कागज पर लिखे। लिखने से दिमाग का बोझ कम होता है, छिपी हुई भावनाएं सामने आती है, और जो अपनी ताकत और कमजोरी है उसको भी पहचाने, यानी कि एक पन्ने पर अपनी खूबियां, अपनी कमियां, जैसे आलस और जो आपकी काम टालने की आदत है या ऐसी भी कोई भी कमी है उसको आपको लिखना चाहिए, और उसके बाद ये जो कमजोरियां है उनको आप स्वीकार भी करें, उन्हें धीरे धीरे सुधारने की योजना भी बनाएं। और सुबह या रात को सोने से पहले 10 मिनट आंख बंद करके शांत बैठे, केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उठने वाले विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखें। तो युवाओं के लिए अगर आत्म अवलोकन इतना जरूरी है, तो इसके लिए अगर हम एक मूल मंत्र है उसकी बात करते हैं कि दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन खुद को जानना ही असली बुद्धिमानी है। तो युवाओं के लिए आत्म अवलोकन है वो इतना बेहद जरूरी है, इनकी

जो आज की पीढ़ी है उनके लिए इतना बेहद जरूरी और प्रासंगिक है, क्योंकि आज का जो भागदौड़ भरा जीवन है या सोशल मीडिया का जो जमाना है या जो ये मोबाइल या ऐसे जो गैजेट्स है जिनका उपयोग युवा ज़्यादा करने लग गया है, तो उससे युवाओं की जो एक भावनात्मक हम देखें या मानसिक जो है वो प्रभाव है या दबाव भी कह सकते हैं, कि युवाओं के अंदर सहनशीलता है या सोचने समझने की जो शक्ति है, ये सारी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सोशल मीडिया और फेक लाइफ का जो जाल है उसमें युवा है फंसते जा रहे हैं, क्योंकि युवा अक्सर दूसरों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। आत्मावलोकन आपको यह याद दिलाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली जिंदगी हकीकत नहीं है, सिर्फ एक हाईलाइट रील है। और खुद से पूछिए कि क्या आप सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपनी खुशियाँ तय कर रहे हैं, यानी कि कोई आपको लाइक कर रहा है, आपकी रील को कमेंट कर रहा है, तो ही आप खुश है, यानी कि आपने अपनी खुशियों को उस लाइक कमेंट के अंदर बांध दिया है। तो अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानें, न कि वर्चुअल दुनिया की तारीफों को, और तनाव के कारणों को खोजें, क्योंकि अक्सर युवा बिना वजह चिड़चिड़ापन उदासी महसूस करते हैं। शांत बैठकर सोचें कि इस तनाव की जड़ क्या है, करियर का दबाव है, दोस्तों का बर्ताव है या भविष्य की चिंता है। तो जब आप इतना सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका तनाव क्यों हो रहा है। अस्वीकार्यता यानी कि रिजेक्शन, इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो समय है उसमें युवा है वो रिजेक्शन को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको उनका जो ईगो पॉइंट है यानी कि उनको रिजेक्शन होते ही उनका ईगो प्रभावित होता है। तो चाहे परीक्षा में कम अंक हो, नौकरी न मिलना हो, आत्म अवलोकन आपको सिखाता है कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सुधार एक मौका है। तो अस्वीकार्यता है वो जो आज के युवा है वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आत्म अवलोकन करेंगे, समझेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि आत्म अवलोकन करना यानी कि इसके साथ रिजेक्शन को स्वीकार करना कितना है वो जरूरी है। और फियर ऑफ मिसिंग आउट से मुक्ति यानी कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें, यानी कि आज के जो युवा है उनमें यह डर बहुत आम है कि सब लोग मजे कर रहे और मैं पीछे छूट रहा हूँ। तो ये जो है वो समस्या है, वो समस्या हर युवा के साथ है। तो आत्म अवलोकन आपको यह समझने में मदद करता है कि हर पार्टी या ट्रेंड में शामिल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने भविष्य के लिए सांस बैठकर पढ़ाई करना, काम करना, ये भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी है कि आप हर जगह उपस्थित हो, हर जगह हर कोई जा रहा है तो आपका जाना भी जरूरी नहीं, क्योंकि जब आपका समय है उस पर आप फोकस करेंगे, आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे अपना समय कहाँ देना है। तो यही आत्म अवलोकन का फायदा है। और एक हफ्ते तक इस बात पर नजर रखें कि आपका समय कहाँ जा रहा है, कि आप स्क्रीन टाइम में यानी कि रील्स में, शॉर्ट्स में आप 4-5 घंटे है वो गवा रहे हैं, यानी कि आपके पास 24 घंटे हैं उसमें से 4-5 घंटे आप रील्स है उनको दे रहे हो। तो ये जो आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, अच्छा खाना है, व्यायाम है, पर्याप्त नींद है लेना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जब आप अपनाएंगे तो आप है वो आत्म अवलोकन से अपना जो दैनिक जीवन में अच्छी आदतों को अपनाकर अपना भविष्य है वो बना पाएंगे। तो आज का जो समय है उसमें युवाओं को आत्म अवलोकन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।

बात मेरी मानिए ही जिंदगी का चेहरा है रास्ते में धूप मिले और कभी बादलों का पहरा है आहा यार मेरे बात मेरी मानिए ही जिंदगी का चेहरा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऑल द बेस्ट से ये प्यारा सा गीत। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती।

रात्रि 9 बजे आप सुन सकते हैं न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।

6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से ही शाम 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30। फिल्म संगीत एक बार फिर से हमारे श्रोता सुनेंगे रात्रि 8:00 आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे शाम 7:00। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15। और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान एपिसोड संख्या 116।
1: एपिसोड 116 116।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुल गुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: निर्धन निर्बल धारे आगे शीश झुकावे,
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो थाने नित ध्यावे,
1: जो

0: दुख हरो दारिद्र हरो ते कष्ट हरो बालाजी
1: हरो कष्ट हरो बालाजी
0: रोग शोक सब दूर करो ते सुखी करो बालाजी।

0: पवन पुत्र है राम दूत थर सारी दुनिया आवे
1: सारी दुनिया आवे
0: थारा दर्शन करे चाव से महिमा थारी गावे
1: महिमा थारी गावे
0: ओ नैया मारी ओ नैया मारी पार लगाया सरती लगाया सरती लगाया सरती हमें भगत की पीड़ मिटाया सरती हमें

0: पवन पुत्र है राम दूत, थारे सारी दुनिया आवे,
1: थारे सारी दुनिया आवे,
0: थारा दर्शन करे, चाव से महिमा थारी गावे,
1: महिमा थारी गावे,
0: ओ नैया मारी, ओ नैया मारी पार लगाया सरसी, लगाया सरसी, लगाया सरसी, हमें भगता की पीड़ मिटाया सरसी, हमें

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी जैसलमेर है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान

0: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मैन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: आज का यह ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और ये सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का, ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा।

0: सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को, किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा सर्टिफिकेशन है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। 2 दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देश भर से आए विधि वेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9,651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10,537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9,651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज की जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में अनियमितताओं की जांच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई, जो निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छोटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वायल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुंचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों 1 दिवसीय रोजगार शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। CMHO ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलो अप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत की नी और पूरा भया काम देश ने समर्पित की ना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई हूँ। राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो चावेला। इ मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा कामारी शुरुआत की नी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। वे चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दौड़ी बनावण री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावण रा काम री शुरुआत की नी। श्री मोदी 1,000 मेगावाट बूता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ये जनता ने सौंपी। प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा हल्काऊं बिजली निकासी सारू 1,900 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चू बनाई जी ट्रांसमिशन लाइन रोई उद्घाटन की नो। ये मौके वे कहो के रिफाइनरी री आ परियोजना विकसित और खुदरे पान उबो भारत बनावन री दिशा माए खास कदम है। श्री मोदी कहो कि तेल साफ करन रा इन कारखानाओं प्रदेश में मोकला लोगां सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला और औद्योगिक विकास और तेज वेला।
4: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
3: श्री मोदी कहो कि पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टीम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण एक चुनौती रो कामयाबी सागे सामो कीनो। व कहो कि दुनिया रा कई देश ईंधन री परेशानियों जूझ रिया हा, वहां भगत ही भारत आगे री सोच नीति अपनार देश री ऊर्जा हिफाजत तय कीनी।
4: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मेट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मेट्रिक टन बढ़ गया।
3: प्रधानमंत्री कहो कि भारत तेल साफ करण रा बूता ने लगातार बधावण सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो कि सरकार दुनिया माए तेल गैस रा संकट पीछे रसोई गैस रा मोल माथा काबू राखण माए कामयाबी हासिल कीनी। जलसा रे दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागन वाला नौजवानों ने

0: आखिरी लगन रा कागजात सौंपया। ई मौके प्रधानमंत्री रसोई गैस भरिया टैंकरी रवाना कीना। श्री मोदी रिफाइनरी री मेन कंट्रोल यूनिट रो दौरो कैरर कच्चा तेल न साफ करण री प्रक्रिया तकनीक और उत्पादन री जानकारी लीनी। वह एक पेड़ माह के नाम अभियान रा तहत रिफाइनरी परिसर माए खेजड़ी रो पौधो ही रोपियो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका। तेल साफ करण रा कारखाना रा उद्घाटन ने राजस्थान सारू माथो ऊंचो करण वालो बतायो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए पूरो देश और राजस्थान लगातार विकास कर रियो है।
1: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और ये सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनता रा नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। पहली प्रधानमंत्री जोधपुर में हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रुपए री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल में जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनो है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथा राखी जिया कार्यक्रम माए जिला ना प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा माए नुई नौकरी लागन वाला ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपिया। इस दौरान 54,000 नौजवाना ने रोजगार किट दिया जिया। आ कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पचपदरा माए राखी जिया कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण बताई जियो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर माए नियुक्ति पत्र दीना। जोधपुर माए राखी जिया रोजगार उत्सव माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सागे राज्य रा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत जनता रा कई नुमाइंदा शामिल हुआ। डीग माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सवाई माधोपुर माए प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर माए किरोड़ी लाल मीणा और चूरू माए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत नवी नौकरी लागन वाला ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपिया। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई ने शुरू भयला। 13 अगस्त ताई चालन वाला पावस सत्र सारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे दीनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सत्र माए देश रा भला सारू खास मुद्दा माथे सार्थक बहस, चर्चा और फैसला करण माथे ध्यान दियो जावेला। कृषि विभाग प्रदेश ने जैविक खेती रा हलका माए आदर्श बनावन सारू जिला स्तर माथे सोशल मीडिया अकाउंट मनार बत्ताऊं बत्ता काश्तकारां ताई पहुंच बधावन री कोशिश तेज करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल आज कोटा माए राखी जाए कार्यक्रम माए बतायो कि किसाना ने जैविक उत्पादन ने बेचण लायक बनावन, जनता ताई मारी जानकारी पुगावन और सर्टिफिकेशन री जानकारी दी जावेला। वे बतायो कि जैविक उत्पादन री बिक्री सारू जिला माए थौड मुहैया कराई जावेला।
2: भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाए, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा है। हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ

0: मौसम राज्य में भे रही चौमासारी बिरखा बीच लाडला 24 घंटा माए प्रदेश लंका उगनी जिला सागे आतुणी हल्का माए कई थोड़ा चोखो में बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब मानसून रे उत्तरी सीमा उदयपुर अजमेर झुंझुनू वहती निकल रही है। विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन माए राज्य रा कुछ और हल्का माए चौमासारी बिरखा भेवन रा आसार है। जयपुर भरतपुर कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आवता 5-7 दिन चौमासारी बिरखा चालती रेवन री संभावना है। इन दौरान उगनी और लंका उगनी हल्का माए कच्छा कच्छा भारी और कच्छा कच्छा घनी भारी बारिश सारू चेताईचियो है। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई हो राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाओ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

किशन वाले से भी सुनता हूँ ना, लाजी भाई का गाना है जो किशन भाइयों के बरसात मौसम चालू होना रहा है और खेती बाड़ी भी तैयारी चल रही है। तो जो भी किसान भाई है जो खेती बाड़ी तैयारी कर रहा है तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी खेती बाड़ी जो फसल हो वो बढ़िया हो। तो वैसे सबसे पहले यही है कि भी जब भी बीज खरीदे तो बीज खरीदते समय सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रमाणित बीजों बीज चुनाव करें और सरकारी संस्था या पंजीकृत विक्रेताओं बीज लें और उन पक्को बिल हमेशा प्राप्त करें और पैकेट में चाहे टैग हो या समाप्ति तिथि हो या वो अंकुरण क्षमता हो या वो लॉट नंबर जैसी सभी जानकारियाँ पाना होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि सरकारी जो बीज खरीदें आपको तो देखो सरकारी बीज जो कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से बीज खरीदो और किसी भी अनजान या गैर कानूनी विक्रेता से कदे भी खुला बीज अपन कौन खरीदो एक चीज़ अपन एक विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि खुला बीज है उसमें कई प्रकार केमिकल भी हो सके या कई प्रकार यूँ मत आप कह सकते भी अच्छा बीज भी हो सके जो कि आप फसल ना और भी नुकसान होगा सके। और दूसरों के भी आप बीज खरीद लिया खुला बीज खरीदना अपन पैकेट बीज खरीदना है जब अपन पैकेट बीज खरीदना है तो उसमें भी अपन विशेष तौर से बात ध्यान रखना है कि बीज जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सील होना चाहिए और

0: मतलब पूरा जो वो पैकेट है पूरा सील होना चाहिए, और पूरे बाहर पैकेट में जो वो रंगीन टैग या नीला जो सफ़ेद लगड़ा रहे वो भी प्रमाण पत्र भी अपन जरूर ले होना है, क्योंकि ये जरूरी है कि भाई जो एक्सपायर डेट की एक करे अभी अपन उनसे सोचू ध्यान रखना चाहिए। और यदि वैधता किसी एक्सपायरी डेट ये बारे में भी अपना पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरों पूरे साथ साथ अपरे जो आपको फसल ली बीज लिया तो मेरी अंकुरण क्षमता प्रतिशत में कितना है, कम से कम अपन ये भी उसमें देख लेने पड़ते हैं कि वो जो अंकुरण क्षमता है वो कम से कम 75% से 80% होना बहुत ज़रूरी है, यदि जब अपन अभी अंकुरण भी लगा चीज़ है। और दूसरों यदि आप बीज खरीदो तो बीज खरीदने में समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि अपन बीज खरीद समय और भुगतान देने से पहले वो जो डीलर है वो सब अपना पक्को बिल लेना जरूरी है, और टैग भी अपन संभाल कर रखना है। जब भी आप अगर फसल खराब होने की स्थिति में हो आप शिकायत कर उस महत्वपूर्ण दस्तावेज अपन आपको पेश कर सकें, लेकिन आप अपन चाहूँ कि भाई अपन अब फसल खराब होती हुई लेकिन एक ही है कि आप वास्ते ये वास्ते ये कि भाई अपन थोड़ा सचेत रहो और बढ़िया तरीके से माल खरीदो बढ़िया तरीके से बीज लो तो इसकी क्या अपनी फसल में कभी भी नुकसान नहीं हुए। दूसरे साथ साथ जो भी मौसम और जलवायु हुए आप और हिसाब जो भी अपना बीज खरीदना जरूरी अपन चयन करना चाहिए, क्योंकि तो बीज की गुणवत्ता असली नकली बीज भी घना अभी बाजार में असली नकली बीज भी घना मिले करे तो आप ले तो लो लेकिन अपनी फसल खराब हो जाए। और पूरे साथ साथ अपन बीजों अच्छी तरीके से जब लो तो उसके बाद अपन बीजों धूप में बढ़िया तरीके से सुखाए के और अपना वो मतलब जो भी पूरी सीलन दीजिए वो अपन निकाल देना चाहिए। पूरे बाद अपन जो भी बीजों ने अंकुरित करके या जो भी अपन बीजों करना है वो अपन जो खेतों में छिड़काव करना है तो उस हिसाब से भी अपन पूरा प्रयोग करना चाहिए। और देखो पहले तो अपने परंपरा स्थिति ये होती कि भाई आप जो खेती बाड़ी करता था वो करता था अपन बैलेंस करता था हल से जोतता था, हमें कि वैज्ञानिक पद्धति आ गई है तो हमें पूरा हर तरह को अलग अलग हो गया है। हमें तो देखो खेतों में आप क्यारियों बन जाए अपने बैल और जगह में आप ट्रैक्टर आ गया और जो को बीज आप हाथ से उछाल उछाल देखता था आज स्थिति हो गई वो बीज आप ट्रैक्टर से क्यारी बंद चलता है। और दूसरी भी अड़ी स्थिति आ गई हम अड़े आप वैज्ञानिक पद्धति आ गया कि आप खेतों में बैठा बैठा भी आप बीजों का छिड़काव आप कर सकते हैं। कहना मतलब यही है कि भाई जब आप खेतों को कर रहे हो तो अपना वैज्ञानिक पद्धति से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि अपना भी बीज को कर लेना को हमें देखो कि ये जो समय वैज्ञानिक पद्धति बढ़ गया नहीं तो बाजार में मतलब अड़ा बीज भी आ रहा है जो कि कम समय में ज़्यादा उत्पादित हो रहा है, तो अपन वो चीज़ों पर भी थोड़े से ध्यान रखना है। और अपन ये चीज़ रमो है ये भी ध्यान रखना है कि भाई आप ये भी देख रहे हो कि आप समय रमो आप रासायनिक उत्पादक बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो अपन रासायनिक से भी बचना है और जैविक से आप काम करना है तो देखो जितना हो सके जैविक काम कर सो तो आपकी फसल भी बढ़िया हो से और आप लागत भी कम आसे। आप ये भी देखो यहाँ पर कि भाई हमें जो स्थिति हो गई है और खेतों में सिर्फ एक फसल से अपनी आमदनी को ले रहा है वो अपने बागवानी से भी ले रहा है और फलदार पौधा लगा के भी ले रहा है और मछली उत्पादन से भी ले रहा है, मतलब क्यों मतलब है कि भाई आपकी खेत सो कोकर और आपकी आय बढ़ा है तो उरा भी तरीका किसान भाई नया नया जो रहा है तो उस साथ साथ अगर सब उसी तकनीकी से आगे बढ़ गया है तो अपन बीजा मोए भी सोच समझदारी रखनी चाहिए। और कुछ किसान भाई तो की करी कि भाई जो आपकी फसल बोई तो वो जो बीज हुई वो आपने घर में संभाल के रख ली तो वो चुकी हुई कि भाई आने वाले समय में जब वो बीजें बोना पड़ी तो की हुई कि आप खुदराई बीज निकाल गए और वो खेतों में कौम में ले ली ये कह चुकी हमारी जो फसल है वो फसल हमारी बढ़िया हो जाए,
1: मतलब क्या अलग भंडारण करके रखे बीजों
0: बीजों भी भंडारण तो कैसे भंडारण कर रखे
1: अच्छा।
0: अपन अगली फसल है उन फसलों में अपना उपयोग में लेना है
1: अच्छा।
0: बीज ना अपने साल संभाल करके और घर में इस तरीके से रखिए जिसके जो रूपों में कीड़ा मकोड़ा बीजा नहीं पड़े
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: बीज सोड़े नहीं तो बरबर उन बीजों ने ध्यान भी रखना पड़े और जब समय आई तभी अपन जो कोई बीज रो अगर अपन खेतों में डालना है तो वो बीजों ने बच्चों ने साफ सुथरा कर कराए बढ़िया तरीके से और आपने खेत में
1: बोल सके
0: बोल सके।
1: बिल्कुल
0: वही कैसे किसान भाई ने कभी अगर कुदरो बीज है तो सबसे बढ़िया बात है अगर बाजार से खरीद हुई तो जो चीज़ आपको बताई कि भाई हर चीज़ जो बहुत जरूरी है बिल पकौ लेना जरूरी है और वो हिसाब से आतंकवाद भी जाना जरूरी है, सरकारी संस्थाओं से भी जाना जरूरी है। ऐसा अगर आप पूरा पूरा ध्यान दें तो निश्चित रूप से जो आप अगली फसल जो आप बुआई कर सो और मैं अपना फसल आप बढ़िया हो और अपना लाभ भी ज़्यादा हो। आप आगे भी बातचीत जारी रख सो।
1: एक राजस्थानी लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। इस रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण व उद्घाटन समारोह किया गया, उस पर प्रसारित की जा रही है रेडियो रिपोर्ट।

0: राजस्थान के पचपतरा में 79,000 करोड़ की राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया। ये देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल परिसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से देश के पेट्रोलियम क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 9 MMTPA क्षमता वाले इस रिफाइनरी परिसर में 29 प्रसंस्करण इकाइयां काम करेंगी। इन इकाइयों से लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऊन से बना पट्टू ओढ़ाकर स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस परियोजना के चरणबद्ध विकास की जानकारी दी। आपने इसे विश्व स्तर की नवीनतम पेट्रोलियम परियोजना बताया।
1: आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां

0: HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई, मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई, पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना का की शुरुआत हुई, अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे, आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कांच धरातल पर उतर गए। सरकार का एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंग परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में पधारे थे, तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में 5वां आपने परियोजना के शिलान्यास सहित 1,00,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को करीब नियुक्ति पत्र 1,000 करोड़ रुपए की अभियान का शुरू किया था। आंध्र प्रदेश को हमारा परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी है। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है।
1: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जल अभाव से मुक्ति मिलेगी, 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
3: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर भी है, और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
1: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण

0: किया गया।
1: रेगिस्तान का रत्न HPCL राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
0: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
2: आजाद राजस्थान की धरती भारत में

योजनाओं को सिर्फ शिलान्यास के नहीं परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है चुनाव की चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन,

0: साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
0: जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
2: बड़े निवेश प्रस्ताव रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार मिले और लगातार चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रही हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह।
3: ये आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी जयपुर केंद्र से इसका रिले किया गया था। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

अग्नि की गाई फिल्म अलबेला के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं सुगम संगीत।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जैसलमेर है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी

0: प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के बचपतरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने बचपतरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 48,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के

विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है।

0: किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: लॉडिंग द डाइवर्स वर्कफोर्स एट द प्लांट, द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड द कॉम्प्लेक्स एज अ मिनी इंडिया वेयर इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स आर वर्किंग अंडर वन रूफ टू पावर द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है।
4: Today India's third semiconductor plant is being launched. The Prime Minister started the first plant on 28th February, the second plant on 31st March and today on 4th July the third plant. Given the speed with which the Prime Minister

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की गाय फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है कि इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना सवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है, तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
3: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
2: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
3: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
2: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार है। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
4: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
3: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
4: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
3: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
2: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
3: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
4: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
1: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
5: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने तथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
6: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
5: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
6: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था। और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में भी लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनको बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आए। मतलब लाट साहब उस जमाने जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग और अब स्थिति ये है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक, जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। उनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी, प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं।

0: बहुत चर्चित है और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुत पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले, तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई, अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मुंह इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार, सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि से जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की, हस्त हिलाई है वीर बार डोली वालों की, गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन, पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थी कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्यकृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे बुझे ढंग। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना, कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, शानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसे तो निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्मत्त यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
2: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खान जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR की सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnab Chattopadhyay. The musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the joints of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnab Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnab Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnab Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnab Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnab Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Thumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन शौरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
1: Tonight, Pandit Arnab Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay and on the tanpura by Koyal Saha.
0: Khayal Gayan ke is karyakram ki shuruaat Pandit Arnab Chattopadhyay Raag Yaman ke saath karenge. Yeh bandish purvardh mein vilambit ek taal tatpashchat drut teen taal mein aabadh hai.
1: Pandit Arnab Chattopadhyay begins his Khayal recital with Raag Yaman. The composition is set to Vilambit Ektal, followed by Drut Tintal.

得吗？

Marama.

da de de ga ma da ga ga ma da ni de ga de ni de da ni de sa.

re ma ga ma re ga ni re da ni ma da ni re ga ma re ma re ga ma

0: खयाल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Yaman in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhya Lay Teen Taal, followed by Drut Ek Taal.

ಮನೆ ರಾಜ ತಬದಿ ಕಲಿ ನಮ್ಮ

0: இதய மலர்
1: மலர்

0: अब पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Hamir. Pandit Arnab Chattopadhyay concludes his Khayal recital with Rag Vachaspati. The composition of the rag is set in Madhya Lay Teen Taal and Drut Teen Taal.

তোমাকে না

Bitter lagging,

0: खयाल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: You are listening to Rag Vachaspati in the Khayal recital by Pandit Arnab Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksh Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koyal Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees. The advanced facility will have an annual production capacity.